रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

0: Assalamu alaikum, adab, and a warm welcome to all of you. दोस्तों हर दिल की धड़कन हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चना 90.4 एफएम और लो हाजिर है और शेजीस लेकर शो व्हाट्स अप
1: पहला बाल के पूरे करके तिन चार जमाता पढ़ के बाल के पूरे करके तिन चार जमाता पढ़ के हत आईफोन गया पढ़ के हत आई

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो शनान 90.4 FM। दोस्तों, रेडियो शनान की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सअप दोपहर के 12 बजे तक आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ चाक से, आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM और दिल की धड़कन। याद रखिए, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना है अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर। सर्च करें रेडियो चना हर दिल की धड़कन। फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स में प्यार जरूर दें।
1: पहला मांग पाई तू गड्डी दी।
0: साथ ही साथ डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। मजीद मालूमात के लिए प्लीज लॉग इन टू www.radiochinar.com। और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव स्टेट मेरे यार धड़का दे रहा।

0: Zeus.
1: Kom her, ja.
2: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: और इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चुनाव वेदर अपडेट
3: यहाँ क्या कहता है आज का वेदर, आइए आपको बताते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कतई बवाल आज के वेदर का हाल।
2: रेडियो चुनाव वेदर अपडेट।
3: आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 26, कल के मुकाबले 1 डिग्री ज्यादा। दैट मींस इट्स गोइंग टू बी अ हॉट हॉट डे। बट वेदर ऐप कुछ और बता रहा है, इट्स सेइंग दैट कि दोपहर होते होते तकरीबन 1 बजे के बाद यानी आफ्टरनून में जी बवाल होने वाला है, और बवाल होगा क्योंकि बताया जा रहा है कि बादल बरस सकते हैं। साथ ही साथ आपको

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: watch your Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप पे अब एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप. मैं हूं आपका साथी जॉक्सियस और कहत ज्ञानी. लोगों ने भी ये बातें मानी कि जाने वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा. वायरल ऑन व्हाट्सएप जहां पर हम पहुंचाते हैं आप तक वायरल सेगमेंट. वायरल रहा एक शख्स का डिवोर्स केस. डिवोर्स लेते ही शख्स ने क्लेम किया कि भैया जब शादी हुई थी, जब प्यार था, जब बीवी बिल्कुल भी डिसलॉयल नहीं थी, प्यार उफान पर था, तो बीवी को उसने अपनी किडनी डोनेट की थी. अब जब डाइवोर्स हो रहा है तो उसे किडनी वापस चाहिए. मतलब कुत्ते नेक्स्ट लेवल की बौखा ली है भैया. जज के सामने

जैसे ही बोला जज वॉज लाइक अरे आपका कूला चीर दे लड़की का किडनी बाहर निकाले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये मर्द जो है बाज नहीं आया और पोस रहा वायरल और आ गया व्हाट्सएप पर। रेडियो 90.4 मैं हूं जॉक्सूस, मेरी जान सरेहट दिखाते रहो।

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिरार 90.4 एफएम, मैं हूँ जॉग्स। शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे।

आजकल थॉट कहता है पीपल से नथिंग इज इम्पॉसिबल बट आई डू नथिंग एवरी डे और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन सुडे हक्ट धड़काते रहो।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: to Zeus. Kon ajo.
1: Zeus. Zeus. Zeus.
2: और इस फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो, सब मैं हूं आपके साथ ही चक ज्यूस। शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए, अपना किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए 8899904904 इज द नंबर 8899904904 आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। जी आप जुड़ने के लिए डीएम भी कर सकते हैं जक ज्यूस के नाम से, मैं दूंगा इंस्टाग्राम पर JOCKXEUS। आप डीएम कर सकते हैं और याद रखिए अपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चनौर के सोशल मीडिया हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो का हिस्सा जरूर बने। आज हम बात करने वाले हैं अंडररेटेड डेस्टिनेशंस की। देखिए पहलगाम, जयपुर, यहाँ वहाँ तो सब जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहें जो बहुत ही अंडररेटेड है, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन लोग वहाँ पर जाते नहीं क्योंकि या तो किसी ने सुना नहीं या तो जगह को कम आंका गया है। कोई पेड़ प्रमोशन नहीं, कोई भी प्रमोटिंग इवेंट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जगह अपने अंदर कितनी खूबसूरती समाये हुए हैं। अब जरूरत है तो बस ये कि लोग इनके बारे में जाने। आज सारा इंडिया घुमाएंगे हम आपको और बताएंगे आपको अंडररेटेड डेस्टिनेशंस के बारे में। हॉट इस फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, मैं हूं जॉक्सिस। याद रखिए 8899904904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर, हर दिल की धड़कन पर, शो मजेदार शो, वह सबसे धड़काते रह।

0: Dios. Dios. Dios.
1: Star Show, what's up? मैं हूं आपका साथी जॉक्सियस। जी हमारे साथ शायद जुड़े हैं देखते हैं शायद सर मजा आता है रेडियो चुनाव सुनकर ऐप के थ्रू तो सुन रहा हूँ फ्रीक्वेंसी कब आप होगी देखिए दोस्त बहुत ही जल्दी आप होगी एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड इट विल बी अ सरप्राइज फॉर अवर लिसनर्स एंड फैमिली थैंक यू सो मच शायद हमसे जुड़ने के लिए आप भी जुड़ सकते हैं अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं 8888-9904904 इज द नंबर आप हर दिल की धड़कन को और जोरों से धड़काने के लिए डीएम करें जॉक्सी उसके नाम से मिलूंगा इंस्टाग्राम पर सर्च करें JOCKEXEUS आईडी पर डीएम करके आप शो में शामिल हो जाएंगे यहाँ कुछ अंडररेटेड डेस्टिनेशंस क्योंकि आज टॉपिक है अंडररेटेड डेस्टिनेशंस इन इंडिया और वही अगर हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड फेमस फॉर इट्स पीसफुल एंड रिच कल्चर मैं बात कर रहा हूँ मजूली असम की अगर आप प्लान बना रहे हैं तो मजूली असम के साथ साथ जवाई राजस्थान का भी बनाए जहां पर आपको रग्ड लैंडस्केप मिलेगा और वाइल्ड लेपर्ड्स के साथ जो कि खुला घूमते हैं लोकल कम्युनिटीज में आप जिंदगी

खुल के जी सकते हैं। और वही एक अंडररेटेड डेस्टिनेशन चिकमगलूर कर्नाटका, और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं मिस्टी हिल्स और यहाँ के कॉफी प्लांटेशंस, क्वाइट नेचर ट्रीट्स और साथ ही साथ अपने आप को जानने का भी मौका। जी हाँ, अगर आपको भी किसी पार्टनर की जरूरत है म्यांमार से, टिकट जरूर कर रही। मैं हूं जॉक्स, आप जुड़े हैं मेरे साथ हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम पर, और मुझसे बात करने के लिए व्हाट्सएप मेरे नंबर पर करें 8899-0494। आप कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी। हर दिल की धड़कन को धड़का दे रहो, सुनते रहो मजेदार शो व्हाट्सएप जॉक्स के साथ।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन धड़कन,
2: रेडियो चैनल 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन। आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो, व्हाट्सअप व्हाट्सअप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ, टेक वर्ल्ड से अपडेट्स और बॉलीवुड से खबरें आप तक पहुंचाएंगे। जरा सा इंतजार, देते रहें प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। जॉक्सिस के साथ मजेदार शो, व्हाट्सअप, श्रेय हक, धड़काते रहो।

0: सी होती है, कंट्रोवर्सी से भरी होती है, लेकिन आज ये बॉलीवुड न्यूज सैडनेस से भरी हुई है, क्योंकि आज हमें छोड़कर चले गए विश्वनाथ पाटेकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने नाना पाटेकर की। या नाना पाटेकर एक इन्फ्लुएंशियल एक्टर, फिल्म मेकर, फिलैंथ्रोपिस्ट, जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा के लिए बहुत काम किया। साथ ही साथ वो जाने जाते थे अपने एग्रेसिव डिलीवरी और फियर्स स्क्रीन प्रेजेंस के लिए।
1: माय भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को
0: यहाँ ये जो सीन है शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे आज भी रिपीट नहीं करता होगा। भाईचारे को दर्शाता हुआ ये सीन हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम इंसान इंसानों की तरह रहे तो कितना सही होगा।
2: तुम्हारी भागो बोलो।
3: सुना तूने?
0: जी हाँ, नाना पाटेकर का वो एग्रेशन, वो एग्रेसिव डिलीवरी हमें इस सीन में देखने को मिलता है, जहाँ पर नाना पाटेकर थप्पड़ मार के एक इंसान को इंसानियत समझाते हैं।
4: मुस्लिमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? उन्हें जो अपना नाम नहीं बता सकते, उनको अपने माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? उन्हें किस्माई, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर असलियत जानना चाहता है ना? इधर कौन है?
5: कल्याण जी।
4: कल्याण जी भाई हिंदू है? ये कौन है? ये कौन है?
0: जी हाँ, इस सीन को आज भी लोग रिपीट करते हैं, और भाईचारे की मिसाल पर ये डायलॉग अक्सर बोला जाता है कि बता हिंदू का कौन सा खून और कौन सा खून मुसलमान का।
4: ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला?
0: दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम मेथड एक्टिंग की बात करें तो नाना पाटेकर ने इस एक्टिंग में भी झंडे गाड़े हैं। अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल पर राज किया, सबको ये बताया कि नाना है तो पॉसिबल है। वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल आर्टिस्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। वही अगर हम अर्ली स्ट्रगल्स की बात करें तो 1 जनवरी 1991 को झंझेरा महाराष्ट्र में पैदा हुए और बड़ी गुर्बत का सामना किया उन्होंने बचपन से ही। 13 साल की उम्र में मूवी पोस्टर्स जेब्रा क्रॉसिंग्स पर लगाकर 35 रुपए महीना कमाया और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपने फिलो थिएटर आर्टिस्ट नीलाकांति से बड़ी ही मॉडेस्ट वेडिंग रही है। वो बताया जाता है कि वेडिंग का टोटल कॉस्ट जो है 750 रुपए था। नाना पाटेकर जो एक संस्था भी चलाते हैं, इनसे जुड़े हुए लोग ये खुद लोगों की खिदमत करते रहे हैं, बी इट एजुकेशन, बी इट सपोर्ट, बी इट एवरी काइंड ऑफ काइंडनेस। ही इंडीड वॉज अ ग्रेट ह्यूमन। और अगर इनके आर्टिस्टिक स्टाइल की बात करें तो इनका यह डायलॉग फ्रॉम द मूवी वेलकम, नाना पाटेकर जो कि एक इंटेंस रोल करते थे, कहते हैं कि बड़ा ही क्रिएटिव और विजनरी डायरेक्टर जिसने मुझे ये कहा कि तुम्हें कॉमेडी करनी है। और मैंने कहा, साहब मैं इतना इंटेंस रोल करने वाला आर्टिस्ट कॉमेडी के साथ क्या जस्टिफाई कर पाऊंगा? मैं उठ के चला गया। लेकिन जब मैंने हामी भरी और अदाकारी की वेलकम मूवी में, वो रोल उदय शेट्टी का कंट्रोल शायद ही कोई भूल पाएगा नाना पाटेकर की इस परफॉर्मेंस को।
6: कांदे ले लो, आलू ले लो।
7: कमाल, कमाल का ठोक दिया है, कमाल। एक बात नोट कर लो मेरी, इस दुनिया को बहुत बड़ा एक्शन दे रहा हूँ मैं।
8: कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप। अमेजिंग।
9: संजना, तुम कुछ नहीं कहोगे?
10: भैया, मुझे तो लग रहा था आपके साथ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कितनी आसानी से सब कुछ हो गया ना।
9: देख हाँ, बड़ा हाँ, कमाल का डायलॉग लिखा।
8: हाँ जी, बोली बोली बोली।
9: सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा है।

0: सुबह से
1: ना एक आलू बिका है,
0: ना कोई आलू बिका है,
1: ना बिका है आधा कांदा।
0: भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप?
1: फिल्म लाइन में?
0: नहीं नहीं, मैं टिश्यू टिश्यू की बात कर रहा हूँ।
2: जी हाँ, आधा कांदा आधा कांदा, ये डायलॉग्स जो है इंसान चाहकर भी नहीं बुला सकता। और ऐसी ही कुछ अदाकारी थी हमारे अपने नाना साहेब पाटेकर की। हजार अक्टूबर 2026, 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इस दुनिया से चले गए। लेकिन जैसा कहा जाता है, माना जाता है कि एक अदाकार, एक आर्टिस्ट कभी नहीं मरता, वो जिंदा रहता है लोगों के दिलों में। वो जिंदा है मुझ में, आप में, हर उस फैन में जो उन्हें चाहता है, उनसे प्यार करता है। जी हाँ, हम श्रद्धांजलि देते हैं ऐसे महान लेजेंडरी आर्टिस्ट को जो न जाने कितने दिलों में जिंदा रहेंगे, जिनकी बात हमेशा की जाएगी, हमेशा उनके लफ्ज दोहराए जाएंगे और उनकी अदाकारी को सराहा जाएगा। रेस्ट इन पीस विश्वनाथ पाटेकर, हमारे अपने नाना पाटेकर। रेडियो 90.4 FM, मैं हूं जॉक्स्यूस, सिटी हुक्ड।

0: अरे गाड़ी रोक,
1: गाड़ी रोक। अस्सलाम वालेकुम।
0: क्या हो रहा है मुस्तफा?
1: कुछ नहीं, गाड़ी जरा खराब है।
0: जीती रहो, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को क्या अपनी तरह लोहे का समझा जो धक्का लगवा रहे हो?
1: मैंने कहा नहीं, वो खुद ब खुद।
0: जा बेटे, गाड़ी ले जा मेरी।
1: नहीं अब्बा, ठीक है, हम चले जाएंगे।
0: मुस्तफा, अब्बा का हर लब
1: सरा खुबर अब्बा।
0: जा बेटे, जा। और सुन, इसकी नजर उतार लेना, इसको किसी की नजर ना लगे। जा।

0: सब बोलेंगे,
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
0: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
0: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे,
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Zeus.
1: Kon aya?
2: तो दोस्तों वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले बता दूं आपको कि ये जो वार्तालाप है, ये जो कॉन्वर्सेशन है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मिलूंगा जॉक ज़ियूस के नाम से। मैं जा रहा हूं अरे यार जदीबा लेकर शो चिनार बीट्स, आप एंजॉय करेंगे बीट्स ऑन रिपीट।
3: कुछ सवाल थे
2: जी हाँ। Till we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care. Masalama.
4: कहूँ सुन रही हो?

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

शो चुनाव बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM। ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। कहाँ जाने के हुजूर, मैं तो फिलहाल यही हूँ। आपको कहाँ जाना है? मैं तो यही हूँ आपकी बातें सुनने के लिए। मैं तो बेसुर हो रही हूँ, तो बस वही है कि आप और मैं मिलके हो जाएंगे बल्ले बल्ले। यानी कि दिमाग और जो हमारा दिल है ना, इनका तालमेल होता है। और खासकर मेरा है ना ये कि मैं अपनी वाइब हूँ और मेरी सारी मेरी ट्राइब है, दिल दिमाग दोनों मिल जाता है और फिर क्या, फिर सफर शुरू हो जाता है। अब सफर तो शुरू हो चुका है। आप हैं, मैं हूँ, मुआगा दस्तूर है। कहाँ जाने का हुजूर, जल्दी से शो का हिस्सा बन जाएगा। देखिए, शाम को खिड़की से चोरी चोरी हो तो बात की बात है, पर आप सुन लीजिए कि बैक टू बैक सॉन्ग्स आपके लिए है।

ताले का इंतजार काहे करना है, नंबर है 8899049094 टेक्स्ट व्हाट्सएप करके कॉल करके आप शो में शामिल हो सकते हैं और हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर का हिस्सा बनकर एंजॉय कर सकते हैं बैक टू बैक सॉन्ग्स को। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक सॉन्ग्स में, हिंदी बात सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चला 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।

शो चुनाव बीच ये सारी बात है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन एयरफोर्स. आज के दिन ही इंडियन एयरफोर्स एस्टैब्लिश हुआ था और आज के दिन पे ही एनिवर्सरी मनाते हैं 94th एनिवर्सरी ऑफ द फोर्स ऑनरिंग द सेल्फलेसनेस ब्रेवरी टेक्नोलॉजिकल पावर ऑफ नेशंस एयर वॉरियर्स. आई मीन लोग जो हमें ज़मीन पे

सेफ रख रहे हैं, हमारे जो सोल्जर्स है, हमारे जो प्राउड सोल्जर्स है, वो कितना ख्याल रखते हैं हमारे देश का, और घर बार छोड़कर उन्हें बस ये होता है कि हर कोई सही से सो सके, हर कोई सुरक्षित रहे, और वही हमारे जो स्काई वॉरियर्स है वो भी हवा में ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि कोई भी खतरा ना रहे और हमारे देश पे कोई आँच ना आ सके। अभी अगर कुछ जानते हैं आज के दिन के बारे में एंड हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग, अगर कोई आपका अपना या आपका कोई इंस्पिरेशन है इंडियन एयरफोर्स में, आप चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे बताइए। और स्पेशली ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, इसको क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, इसका थीम क्या है, ज़रूर बताएंगे। आप भी शो का हिस्सा बन जाइए और 8899904904 पर कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं आप। शो चुनार बीट्स, बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चुनार 91.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: देखिए हंसी लाली तो है ही, क्योंकि वो टाइम ही है हंसने का, टाइम ही है आपकी बातों को आगे पहुंचाने का। शो म्यूजिक ऑन डिमांड, आपकी रिक्वेस्ट, आपके जज्बात जो उन गानों के साथ हम पहुंचाएंगे वहां वहां तक जहां तक तुम पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज़। तो जल्दी से शो म्यूजिक ऑन डिमांड कैसे बन जाए अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90।

0: शोचना और बीट्स, और ये ट्रैक आखिरी है शो का, क्योंकि शो ख़त्म होने जा रहा है और मेरी मुलाकात अब कल होगी आपसे बराबर 12 बजे
1: मेरे करीब।
0: ठीक है, आपके करीब होना, आपसे बातें करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट क्या करें, टाइम जितना मेरे पास है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात कर पाती हूँ। एंड आज इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स आज एयरफोर्स डे है, तो बात हो रही थी। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, आप अपने ख्याल रखें और कल आऊँगी बराबर 12 बजे और 2 बजे आपसे एसरा जुड़ेंगे शो हंगामा लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम है हजरात, भूल के गोले वो बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 एफएम।
2: सारेगामा कारवा 2.0।

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: Hi, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM.

क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

है हजरात, भूल के गोले वो बम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4।
4: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
5: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
4: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
5: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
4: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
5: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
4: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
5: रेडियो चुनार 90.4 FM।
6: दिल को
7: करार आ जाए
6: जब भी आए
7: सुहानी शाम,
6: दबी यादें महक जाए
7: जब भी आए
6: सुहानी शाम,
7: सुनिए सुहानी शाम
6: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
7: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 एफएम।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: रात अकेली है।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

सूरज, चंद, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: चाहूंगी शोर बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हमके वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: बंदी मुट्ठी लाख की और
2: पीड़ित चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की मुश्किल।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।